जैसे तरबर पंख बसेरा जैसे तरबर पंख बसेरा सतनाम वाहे गुरु साहेब जीओ

अजन्ने सभं गुरु प्रसाद तेरी पनह खुदाए ओम बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी गुर मूरत पूरन ब्रह्म कट कट अंदर सूरज सुजै

देव माता, गुरुजी यू आर माय मदर, गुरुदेव पिता यू आर माय फादर, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, वाहिगुरु जी यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल। दिस ब्यूटीफुल शब्द इज बाय तन साहिब श्री वैकुंठ देव जी महाराज। महाराज जी टेल्स अस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिलेशनशिप दैट यू कैन थिंक ऑफ, महाराज हैज पुट इनटू द शब्द। Projectors are above us here. कोई ऐसा पुरानी ना रहे जिहड़ा शब्द दे ट्रांसलेशन ना पढ़ी हो जाए। जिहड़े पुरातन गुरसिख ने बाणी नित्रे वाले, वह हमेशा ही आप ही जानते हो यह जिहड़ा श्लोक है, ये आप पढ़ना कहते हैं कि अंत दे विच, पहले शुरुआत दे विच ते अंत दे विच हमेशा ही अपने नित्रे दे विच इहनूं इंटरप्रेट करते हैं। तो क्यों करते हैं इस तरह देखो।

हम आप गुण भरी एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखा बिखकाई माया मोह परम कै भूले सुत दारा सुमीत लगाई एक उत्तम पंथा सुनियो गुर संगत तेह मलंत जंत्रा सुमटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू शरणाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

निरंकार संघ जप संघ बाहु संघ पूजा संघ बदाओ असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ संघ जो मन उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार संघ सदिया संघ दातार संघ सूरम अखसार असंख मोहन लिवलाए तार कुदरत कमन का

प्रसाद करुणाले हैं, रकाले हैं, कलखंडन है, महामंडन है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व बारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मनमानीय है, जगजानीय है, सर्वंबर है, सर्वंकर है, सर्वासी है, सर्वनाशी है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, ब्रह्मंड सह, खलखंड सह, परते पर है, करुणा कर है,

सदायंग संगे अभंगं विभूति त्व प्रसाद समये एक ओंकार सरगुण प्रसाद पारशाही दसवीं त्व प्रसाद समये श्रावक शुद्ध समूह सदान के देव रेव प्रजुग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मर को न देखिए पाँ पति के श्री भगवान के पाए कृपा होंदे एक रतिमन एक रति के माते मतंग जरे जर संगानूप तंग सुरंग सवारे होर तरंग कुरंग सिख दत्ता पौन के कौन को जातन वारे पारी जान के भू बली बेनाम शीस न जात विचारे इत पैदा काम भूपता अंत को नंगे ही पाए पदारे जीत भरा सब दे दसान को बाजत ढूल मृदंग नगारे गुंजत गूर गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपता कौन गनी नी जात विचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिना अंत काओ अंत के दाम सदारे तीर्थ नाम दया दमदान सो संयम ने मानेक सिखा भेद पुराण देव पुराण जमीन जमान सुबान के बेखा पौन हार जति जाता सभा सुमचार हजार कलेखा श्री भगवान भले मन भूमता एक रति मन एक न लेखा शुद्ध से पादनंद बासु सा सुनांदर जान दलेंगे भारी कमान परे मन मैं कर बरबत पंखा ले न हलेंगे तूर रीन मरूर मवासन माते मदंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्या जहान निदान चलेंगे वीर पार बने मरियार बचार सार की धार बशैया तूर तदेश मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े कड़ान के तूड़ नहार सुबातन हिंचक चार लवैया साहेबा श्री सब को शरणायक जाजगन एक सो एक दवैया दानव देव निंद साचर पूर्ण भविख भमान जपेंगे जी जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब था थपेंगे पन बर तापन बाढ़ जय तन पापन गे पापन खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जाग शत्र सबाय अवलो छपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरातब जौन तरड़ो को राज करेंगे कोर्ष नानक जात गदान ने स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात अंध फसैजम भा भरेंगे जी नर श्री पर के प्रसह भगदे नर हरना दे धरेंगे कहाँ भयो जादू लोचन मुंद का बैठ रे भगत ध्यान लगायो नात फिर लिये सा समुंदर लो गयो पर लो गवायो बासकी बिखियान सु बैठ कै ऐसे ही ऐसे सु बैस बतायो साच कहूँ सुन लेहो सब जिन प्रेम किया तनी प्रपायो काहू ल पाहन भूतरियो सिर काहू ल लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हरवाची दसा मैं काहू बशा को सी सुनवायो को बतान को पूजत है पशु मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बतान को पूजत है पशु मेरे तान को पूजन तायो पूर क्रिया और ज्यो सब ही जग

निरलंब आदनलाद संबतं का मूल चार तबीदा जाकू भी उन बाब तबीदा ता कौ कार पाहन अनुमानत महामूढ़ का भी धन जान महादेव को कैद सदा सेव निरंकार का चिंतन बेवा आपे अपनी बुद्ध है जीती बरणा भिन्न भिन्न द्वेती तुमरा लखा न जाए बसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एकै रूपा नु सरूपा रंग का भयो राव कई बुबा अंडा दीर जसे तजकीनी अकबर खान बहुर राजदीनी कहूँ फूल राजा हम बैठा कहूँ सेवंट पै संगर कैठा सिगरी सेठ दिखाए चंबावा जुगा सरू स्वंबव अवर्षा मेरी तुम करो सिखी उबार आ सिख संगरु दुष्ट जते उठ उत्पाता सगल मलेश करु रणकाता जी आ तुम तव शरणी परे तनके दुष्ट दुख हवे मरे पुरख जमन पापरे देहारे तनके तुम संगड सपटारे जो कल को एक बार दे आए हैं तंके काल निगण हैं रिश्चा हुए तय सब काला दुष्टारी तरह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो तंके ता तंक मुँह हर हो रे दास कर्म सब हुई दुष्ट शाश सक न कोई एक बार जैन तुम संभारा काल फास्ते ताई अंबारा जिंदर नाम देहारू का दारद दुष्ट दुख ते रहा खड़ केत मैं शरण देहारी आपा दलो बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लियो बचाई कृपा कृपा करी हम बर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किरब सकल दे को हरता दुष्ट दुखियन को शह करता श्रीया तुजा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मनमांशत फल पावै सुई दूहनंद साहब आपद कोई अड़ेला सुनै गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुनै मूल चित लाए चतुरता आवई

चौमई संबत सत्रह सहस वणिजै अर्ध सह मुदीन गिहिजै भाद्रव सुधी अष्टमी रवाराती सत्र द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाई गहे जब ते तुम रे तब ते कुआंक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वीर सब भीत कह हम एक न जान्यो श्री सुभान कृपा तुम्हारी कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो।

का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करहे गावा वहे, मगहि मुख द्वार जति सदावे जुगत न जान हे, छट वहे हे घर बार, सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे।

आपे भांडे सजन आपे पूरण दे एक नी दुध समाई चुले रह चने एक ने हाली पैसवने।

परम सम्मान योग जुगो हो जुग अटल चवर छतर तख्तां दे मालक सतगुरु दसाहां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जीओ अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना दे अंदर जुड़ बैठ के सतगुरु जी दी महान बख्शिश कृपालता दा सदका आसा की वार दे कीर्तन सत्कार जो कीर्तनिया पासों आप सरबत साध संगत जी ने सरवण कीते हन तन सो वेला कड़ी तन तन मूर्त पलसार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार ओ समा पल कड़ियां सफले हन जेड़े सतगुरां दी पावन चरण शरण दे विच जुड़ बैठ के अमृत गुरबाणी नूं गाउंदिआं सुणदिआं बतीत हुंदे ने ओह समां सफला है ओह जीवन भी सफल है जिहड़ा परमेश्वर दी याद दे विच बतीत होवे अज अमृत वेले जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं ने प्रकाशमान हुंदिआं पावन पवित्र मुखबाक हुक्मनामे की बख्शिश कीती है नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे मुखारबिंद तो चारण होए पावन अमृत बचन सोरठ राग दे विच पावन अंग 631 तो आरंभ हो के 632 तक सुशोभित हैं। अज दे इस महान मुखबाक दे अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कृपा की और एक खास बात सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे शब्दां दे अंदर आरंभता वाला बंद और रहाओ दा बंद है। करीबन सारे शब्दां दे अंदर आरंभता वाले बंद और रहाओ दे बंद ने शब्द दा मुख भाव सोरठ महला नौवां

हरे गुरु जी, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। वाहेगुरु जी, सोरठ महला नौवा, मन रे कौन कुमातै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। राव मुगत पंथ जान्यो तै नाहिन, धन जोरन कौताया, अंत संग काहू नहीं दीना। बिरथाया